हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपहु जिन हर निरपहु त्याया जी तिन का पहो सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

तेत सर्वरड़ पहिले निवासा पानी पावकत ने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत मूड मना

शरण परे की रखो हो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो वाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की विच्छा।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर परशाने, घट घट के पट पट की जाने। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब या करख कर तुहु कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे।

श्रीगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आजुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्त हुई तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे

कृपा दृष्ट तन जाहिने हरे हो ताके ताप तन कमय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट शाह स्व सकय न को एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास देता है उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण ते हारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठौर मोह सहाई

जान नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाए। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हरला, आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सुरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे। रहाओ ये संसार विकार संसे में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए। पिया वै हो रस अकथ कथा तिन जानी, जा कौ आए सोई बिहाजो। हर गुर ते मन है बसेरा, निज घर महल पावहो सुख सहजे। बहुर ना होए गो फेरा।

गर्भगंजन सर्वपंजन आद रूपे सूत अंग हीन अपंग अनात्म एक पुरखे पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार।

चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र प्रति चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र

समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी कनी मुल्कु निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंकरियंकरी मुल रघी में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं भव।

अविनाशी जीन को दाता सिमरत साब मल खोई गुण निदान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई।